केवेनष्टेयाता न एञता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम